दिल की दिल में रखती हूँ, यही मेरा कसूर है। जितनी मैं तुझसे उतना तू भी तो मुझसे दूर है। कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ पर लर्जिशें होठ मेरे मजबूर हैं। मिलके भी हम ना मिल सके, शायद किस्मत हो ये।

देश में नए हैं? नेशनल बैंक कनाडा में आपके पहले कदम उठाने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ है। मनी सेंस के अनुसार 2025 में कनाडा में नए आने वालों के लिए सबसे अच्छा बैंक खोजें और नए आने वालों के लिए हमारी बैंकिंग सेवाओं के साथ शुरुआत करें। नेशनल बैंक।

देश में नए हैं? नेशनल बैंक कनाडा में आपके पहले कदम उठाने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ है। मनी सेंस के अनुसार 2025 में कनाडा में नए आने वालों के लिए सबसे अच्छा बैंक खोजें और नए आने वालों के लिए हमारी बैंकिंग सेवाओं के साथ शुरुआत करें। नेशनल बैंक।

देश में नए हैं? नेशनल बैंक कनाडा में आपके पहले कदम उठाने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ है। मनी सेंस के अनुसार 2025 में कनाडा में नए आने वालों के लिए सबसे अच्छा बैंक खोजें और नए आने वालों के लिए हमारी बैंकिंग सेवाओं के साथ शुरुआत करें। नेशनल बैंक।

0: The station with the best music.
1: I love the music.
2: This is East FM.
3: It's East FM.
4: Feel the power. Feel the bass. 102.7 FM.
5: चैन और करार खो रहे हैं हम, तेरे इश्क में बेकरार हो रहे हैं हम।